0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: The impact of climate change. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार।

0: से सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद

0: की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल नीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी

0: पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over two tranches spanning 6 months. The National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of the examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid students' protests over the issue. Here is a report.
4: The Jharkhand government has cancelled 44 recruitment examinations conducted by JPSC, JSSC and outsourced agencies, including the JSSC CGL and examinations conducted by TDPL. The cancelled examinations include the JPSC 11th to 13th Civil Services examinations, CDPO, Drug Inspector, Civil Judge, Assistant Conservator of Forest, Forest Range Officer, Assistant Professor and other recruitment examinations. The government has also cancelled examination results where the preliminary work was conducted by TDPL, even if another agency subsequently handled the process. The notifications state that the JSSC CGL examination was cancelled based on findings emerging from the SIT probe into alleged irregularities and the ongoing CID investigation. The government has also decided to postpone 6 examinations and order CID investigations into 17 examinations. A fast-track court will be sought from the High Court for cases relating to alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. Internal vigilance cells will also be constituted in both commissions, while a committee headed by senior IAS officer Amitabh Kaushal will recommend reforms in the examination system. The committee is expected to submit its report to the government within 2 months. The decisions follow a 25-day student agitation demanding cancellation of disputed examinations and investigation into alleged irregularities, with students earlier announcing a proposed protest outside the Chief Minister's residence on August 20th. While students had welcomed the cancellation of the JSSC, CGL and other examinations, they have maintained that the demand for a CBI probe must also be addressed. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
3: The anti-corruption branch of the Delhi government has arrested former Delhi Minister and AAP leader Satendra Kumar Jain, former CEO of the Delhi Jal Board Udit Prakash Rai and 4 others accused persons. Our correspondent reports that these arrests have been made in connection with alleged irregularities and criminal conspiracy in the tendering process related to augmentation and upgradation of the sewage treatment plants of the Delhi Jal Board.
5: The case was registered against them on the complaint of Directorate of Vigilance. During course of investigation, it was revealed that the tendering process allegedly involved restrictive technical specifications and conditions favoring a particular technology provider, thereby restricting competition and providing undue advantage to a selected private entity. Investigation further revealed that private persons were allegedly in regular communication with certain public servants and intermediaries in order to manipulate the tender process. ACB said it indicates an alleged nexus between private persons and public functionaries for influencing the tender conditions in favor of a particular technology provider. The investigation is examining the complete money trail and the alleged proceeds of crime. With Anupam Anand, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: In West Bengal, 9 people have been killed and 6 others injured in a fire at a hotel on Free School Street in New Market area in Kolkata early this morning. Police sources informed that the fire broke out at around 2 a.m. and thick smoke began billowing from the third floor of the 5-story building located right next to the fire brigade headquarters. Preliminary investigations revealed that the hotel reportedly had no fire safety or firefighting system. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:41 और 6 सेकंड हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर FM रेनबो. बुधवार का दिन 19 अगस्त 2026 और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान. जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं. जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं. तो दोस्तों चलिए आंखों आंखों में कुछ बात करते हैं.

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी ठीक 9 बजने वाले हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मस्त मुंबई। तो हमारे इन गीतों को सुनकर हमारे कुछ लिसनर्स जैसे दीपा पालकर जी और प्रणव शिंदे ने पहले ही बता दिया कि रविन आज जानिसार अख्तर साहब जैसे उम्दा शायर की पुण्यतिथि है। बहुत खूब, आपकी जानकारियां बहुत अपडेटेड रहती हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि आज 3 महान हस्तियों की पुण्यतिथि है। इनमें एक हैं जानिसार अख्तर साहब, और जिन्होंने CID, ब्लैक कैट, प्रेम पर्वत, शंकर हुसैन और नूरी जैसी फिल्मों के लिए बहुत ही खूबसूरत कमाल के गाने लिखे। और उत्पल दत्त साहब को भला हम कैसे भूल सकते हैं, उनका अपना एक खास एक्टिंग का स्टाइल रहा और जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और एक और महान हस्ती हैं संगीत की दुनिया के बहुत बड़े सितारे, आज उनकी भी पुण्यतिथि है और उनका नाम मैं आपको नहीं बता रहा, उनका नाम आपको बताना है गाना सुनकर। जी हाँ, कुछ अगले 1-2 गाने सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज किस संगीत की दुनिया की किस बड़ी हस्ती की पुण्यतिथि है। एनीवे, हम इन 3 महान हस्तियों को इस कार्यक्रम में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इस तीसरी हस्ती का नाम आप व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी बताएं और उम्मीद है कि अगले 1 या 2 गाने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो सुनते रहिए FM रेनबो। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, मैंने एक सवाल पूछा था कि आज संगीत की दुनिया की किस हस्ती की पुण्यतिथि है। तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने एकदम सही जवाब दिया और इनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। धोबी तालाब से प्रकाश शर्मा जी और माहिम से दीपा पालकर जी, पुणे से राकेश माथुर जी, अजमेर राजस्थान से महेश बोरा जी और कांदीवली से मनीष वकील ने, और प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे ने मानखुर्द से, और पंकज माहौड़ ने अमरावती से, और तनुजा शर्मा जी ने अंधेरी से, और लाली झा ने अजमेर से। मैं बताना चाहता हूँ कि आज हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही काबिल और बहुत ही सफल संगीतकार की पुण्यतिथि है। इनका नाम है खय्याम साहब। तो हम खय्याम साहब को उनके गीतों के ज़रिए आज याद कर रहे हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: मनोरंजन पूरे परिवार का, कनेक्टिविटी पूरे भारत की। BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में। 200 Mbps, 25 OTT, 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग। सीमित अवधि का ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-444 पर कॉल करें। BSNL, हर परिवार का भरोसा।
3: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। लव यू ऑल।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। कभी कभी फिल्म का ये प्यारा सा गाना भी आपने सुना। आवाजें थी लता जी और मुकेश की, और लगभग 9 मिनट का ये लंबा गाना है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत है और खयाम साहब ने इसका संगीत तैयार किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दो लिसनर्स और हैं जिन्होंने सही जवाब दिए थे। उनके नाम हैं विजेंद्र घाटो लकोला से और शुभ लक्ष्मी मस्तकार। इन दोनों लिसनर्स का जवाब भी सही था। तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। आज एक खास दिन है और उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। आज है विश्व मानवतावादी दिवस। जी हाँ, इंग्लिश में कह सकते हैं कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसका मतलब है कि सीधा सीधा कि जो लोग संकट में हों, तकलीफ में हों, इंसानियत के नाते उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। तो 25 दिसंबर 2009 को दोस्तों एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। जी हाँ, कह सकते हैं हिंदी में कि 3 मूर्ख इंसान, 3 इडियट्स। इसके डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, और फिल्म के अंत में एक बच्चा पैदा होने का सीन दिखाया गया है, यानी डिलीवरी का भावुक सीन पिक्चराइज किया गया है। इस सीन में फिल्म एक्ट्रेस मोना सिंह एक बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन पूरे शहर में भारी बारिश है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सड़कें जाम हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है, और इसलिए उस वक्त उस महिला को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। और जहाँ पर वो है इस वक्त, यानी कॉलेज की जो बिल्डिंग दिखाई गई है, वहाँ पर लाइट चली जाती है, तो ऐसे में बच्चे की डिलीवरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो फिल्म के नायक हैं आमिर खान साहब और उनके दोस्त। तरह तरह की लॉजिक

0: यानी थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा विज्ञान, ऐसी तिकड़ में ढूंढ कर बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं और अंत में एक ही बात सामने आती है, ऑल इज वेल। जी हाँ, ऑल इज वेल। खैर, ये तो फिल्म की बात है। फिल्म में वो वही दिखाएंगे जो उन्हें अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाना है, कहानी के हिसाब से दिखाना है, और फिल्मों में हम सभी जानते हैं कि थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। लेकिन असली जिंदगी में भी कभी कभी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, और क्योंकि आज हमारा स्लॉट है मुंबई की लोकल ट्रेन के किस्से, जी हाँ, तो मुंबई की लोकल ट्रेन में होने वाली एक ऐसी घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी, और उसी के बारे में बात होगी। तो फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:38 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और बात कर रहे हैं लोकल ट्रेन के एक खास किस्से की। तो दोस्तों, ये घटना है अक्टूबर 2025 की और लोकल ट्रेन में देर रात इंसानियत की एक ऐसी घटना देखने को मिली जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। गोरेगांव ईस्ट में रहने वाले विकास बेंद्रे रात 12:30 के आसपास मुंबई लोकल से चर्च गेट की तरफ जा रहे थे। राम मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके डिब्बे में एक महिला दर्द से चिल्ला रही थी। वो महिला दरअसल प्रेग्नेंट थी। विकास ने इमरजेंसी चेन खींची और महिला को डिब्बे से नीचे उतारा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और सोचते सोचते उन्होंने डिसाइड किया कि जो सिचुएशन है इतनी गंभीर है और अचानक उन्हें एक महिला डॉक्टर जिसे वो जानते थे उसका उन्होंने नंबर निकाला अपने मोबाइल में और उस महिला डॉक्टर को वीडियो कॉल किया। उस वीडियो कॉल के ज़रिए उस महिला डॉक्टर ने उन्हें तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए, तरह तरह की गाइडलाइंस दिए और जिसकी वजह से उस महिला की डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ही हो गई और बच्चा और महिला दोनों पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बाद में इस महिला को कूपर हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर एडमिट किया गया और पता चला कि बच्चा भी पूरी तरह से सुरक्षित है और महिला भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी लोकल ट्रेन के एक पैसेंजर विकास बेंद्रे साहब ने एक डॉक्टर की हेल्प से वीडियो कॉल पर उस औरत की सहायता की और इस तरह से स्टेशन पर एक मासूम नन्ही जान को जीवन दिया, जन्म दिया। यानी ये एक लोकल ट्रेन का इंसानियत की मिसाल वाला बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार किस्सा है। तो सुनते हैं अगला गीत, लता जी की आवाज़ और खयाम साहब का संगीत। चलिए चोरी चोरी कहीं चलते हैं किसी के दिल में।

0: Cosmos Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित.
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: EKYC,
1: NEFT, RTGS,
0: IMPS,
1: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.

नूरी, बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों। 9:51 और 11 सेकेंड और मैं आपके साथ रविन, कार्यक्रम मस्त मुंबई और खयाम साहब के गाने हम आपको आज सुनवा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि विकास बेंद्रे की सोच से, उनकी समझबूझ से एक प्रेग्नेंट महिला को ट्रेन में हेल्प मिली और जिस डॉक्टर को उन्होंने कॉल किया था उनका नाम है डॉक्टर देविका देशमुख। देविका जी का कहना है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही थी और उसी समय विकास का फ़ोन आया और उसकी वजह से मैं ये नेक काम, ये अच्छा काम कर पाई। और इसकी सारी वजह इसका वो सारा क्रेडिट, सारा श्रेय सिर्फ विकास को देती हैं कि विकास की वजह से ये अच्छा काम हो पाया। दोस्तों, आज इस किस्से का, यानी ये जो इंसानियत से भरा हुआ किस्सा, इसकी चर्चा करना ज़रूरी भी था क्योंकि आज है विश्व मानवतावादी दिवस और इसका मतलब है सीधा सीधा कि कोई भी इंसान कहीं मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, किसी भी तरह के कष्ट में हो, तो सिर्फ उसकी मदद करना इंसानियत की वजह से, जी हाँ, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा करने वाले सभी लोगों को, यानी विकास बेंद्रे जैसे सभी लोगों को आज हम पूरी मोहब्बत के साथ, शिद्दत के साथ FM रेनबो की तरफ से सलाम करते हैं। और स्लॉट का आखिरी गीत मैं आपकी नज़र करूंगा, बहुत ही खूबसूरत गीत है और फिल्म का नाम है चंबल की कसम। आवाज़ें हैं लता जी और रफ़ी साहब की। और चलते चलते मुझे याद आ गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म 8 अगस्त 1980 को रिलीज़ हुई थी, यानी रफ़ी साहब का निधन हुआ था 31 जुलाई 1980 और ठीक उनके निधन के लगभग 7-8 दिन के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई, यानी उनके निधन के बाद उनका ये पहला गाना रिलीज़ हुआ था और ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया था क्योंकि रफ़ी साहब के जाने के बाद उनका पहला गाना जब आया तो लोग बहुत ही भावुक हो गए थे। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, सिमटी हुई ये घड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत, और इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम मस्त मुंबई ख़त्म होता है। इस शो में आपके साथ था मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। जिस निगाह ने पा लिया चाहत का नशा, जिस निगाह ने पा लिया चाहत का नशा, दुनिया की निगाहों में आवारा हो गई। तो चलिए मिलते हैं अगले स्लॉट यानी नमस्ते भारत में, और अभी आप कुछ ही पलों में सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:41 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं FM रेनबो. अभी आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस. सरकार ने पाइप से रसोई गैस PNG कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है. इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है. ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी. कल भारतीय तटरक्षक बल ने दमन एयर स्टेशन के पास डूबती नाव में फंसे 9 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया. इनमें से 3 घायल मछुआरों को दमन एयर स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में आगे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया. महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा ने कल मुंबई की ऐतिहासिक एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय का दौरा किया. उन्होंने वहां मौजूद दुर्लभ पुस्तकों, दस्तावेजों, मानचित्रों और सिक्कों के संग्रह का अवलोकन किया. श्री वर्मा ने कहा कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत और संस्था से जोड़ना चाहिए. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस. जी हाँ, मुंबई सिटी, वेलकम बैक. 10:26 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत. और आज इस स्लॉट में हम बात करेंगे जीते हैं शान से. एक ऐसी महिला की कहानी सुनाएंगे जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी. कितनी सारी दिक्कतें उसके सामने थी, पूरा सिस्टम उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं किया और पूरी कह सकते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरी ताकत के साथ सारे हालात का सामना किया और अंत में जीत हासिल की. तो ऐसी महिला की आज कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. फिलहाल बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता जी और किशोरदा की आवाज़ें. फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई, लेकिन हम आपके लिए हमेशा वफादार रहेंगे.

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास दिन है और हमारे लिसनर फिरोज सिंगनपुरिया जी ने ये जानकारी हमारे साथ शेयर की है। वैसे मैंने इसे मिस करने का सोच रखा था। एनीवे, फिरोज भाई, थैंक्स अ लॉट। और आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, यानी ये साल के हर 19 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का एक ही मकसद है कि फोटोग्राफी की जो ये कला है, जो ये विज्ञान है, इसको बढ़ावा देना, इसके बारे में बात करना और साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर दुनिया के सभी फोटोग्राफर्स एक साथ मिल सकें और अपने अनुभव शेयर कर सकें। और इसकी शुरुआत 1839 से की गई है और फ्रांस ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर गौर से देखा जाए तो ये जो फोटोग्राफी दिवस है हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। जी हाँ, हम साल के 365 दिन ही ये फोटोग्राफी डे मना रहे हैं, यानी जब से हम सबके हाथों में ये जो मोबाइल नाम का यंत्र आया है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और फिर रात से लेकर सुबह तक, कहीं ना कहीं लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं, सेल्फीज़ लेते रहते हैं, कहीं भी हो, घर में हो या घर के बाहर हो या किसी दूसरे के घर पर हो, कोई भी प्लेस हो, हमने किसी जगह को छोड़ा नहीं है जहाँ पर हम इंसानों ने मोबाइल से फ़ोटो ना खींचे हों और दोस्तों को भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। यानी ये जो फोटोग्राफी डे है 24 घंटे चलता रहता है, हम 24 घंटे इसे मनाते रहते हैं। एनीवे, चलिए अगला गीत, आशा जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत और आपकी जो मस्ती है, यानी गीत संगीत की जो मस्ती है, उसे थोड़ा सा आँखों में उतार लेते हैं, आपकी आँखों में आँखों की मस्ती।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:27 और 46 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और जैसा कि मैंने कहा था कि आज इस स्लॉट में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपने इरादे को कभी नहीं छोड़ा। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, और जल के जो साधन हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इस धरती पर जल नहीं होगा उस दिन ना आप होंगे ना हम होंगे, यानी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया दोस्तों कि एक इंसान के तौर पर, जी हाँ एक इंसान के तौर पर, हम इन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं? ऐसा कौन सा खास काम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा? शायद कुछ भी नहीं। जी हाँ, कुछ भी नहीं करते। हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, ये जिम्मेदारी है सिर्फ सरकार की, सिस्टम की, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सरकार ही इसमें सब कुछ कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना होगा, उठाना होगा और समझना होगा कि हम किस तरह से प्रकृति को बचाएं, नेचर को बचाएं, जल के साधनों को बचाएं। हम सभी के घर में पानी आता है और हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि कितनी बार हम किस तरह से पानी को बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। नल का खुला रह जाता है और हमारा ध्यान नहीं रहता है, पानी बहता रहता है और वेस्ट हो जाता है। और कभी कभी हम

0: इसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो वो भी पानी की एक तरह से बर्बादी है। अगर आप पानी के बारे में, जल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए कह सकते हैं कि हम पानी को लेकर कितने लापरवाह हैं और साथ ही साथ हमें इसके लिए कितना ज़िम्मेदार होना चाहिए, इसके बारे में भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें कह सकते हैं अपने दिल की बात। और फिर आपको जब इस महिला के बारे में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे एक आम साधारण महिला ने पानी को बचाने के लिए, जल के साधनों को बचाने के लिए कितनी जहमत उठाई, कितना संघर्ष किया। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, यानी अगला गाना एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
6: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
5: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
6: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी 10:41 और 30 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और एक ऐसी महिला की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे विरासत में मिली थी गरीबी, भूख, पढ़ने लिखने की कोई भी सुविधा नहीं, कम उम्र में शादी हो जाना, और फिर शादी के बाद सिर्फ दोस्तों 22 साल की उम्र में किसी लड़की का विधवा हो जाना। लेकिन जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना, जिंदगी से बचकर इंसान भला कहाँ भाग सकता है। जिंदगी चलाने के लिए उसने एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस लड़की को बचपन से ही नेचर से, प्रकृति से मोहब्बत थी, प्यार था, और इसी प्यार ने उसे एक बहुत बड़ा मकसद दे दिया। इस लड़की ने देखा कि इसके गाँव के आसपास जो पहाड़ हैं, जो पेड़ हैं, उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, काटा जा रहा है, और पानी के साधनों की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। बस इस लड़की ने इस हालात से लड़ने का फैसला कर लिया, और लड़ाई भी इतनी बड़ी और इतनी लंबी कि एक आम इंसान लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और हाई कोर्ट में जा पहुंची और एक जनहित याचिका दायर की। लेकिन इसकी कोई भी बात वहाँ पर सुनी नहीं गई, और इसे फिर मजबूर होकर अदालत के बाहर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, और वहाँ से उसे हटाने की हर तरह से कोशिश की गई, तरह तरह के लालच दिए गए, तरह तरह से डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इसका इरादा बहुत मजबूत था, एकदम हिमालय की तरह। तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और दोस्तों उसके बाद होगा अगला प्यारा सा गीत।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हम मुंबई सिटी बात कर रहे थे उस महान महिला की, उस मजबूत महिला की। तो जाने से पहले उसकी स्टोरी पूरी करना चाहता हूँ। अदालत के बाहर उनकी भूख हड़ताल चल रही थी और

चारों तरफ उनके नाम की चर्चा हो रही थी। उनकी 19 दिन की भूख हड़ताल के बाद हाई कोर्ट ने पहाड़ों और पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। दोस्तों, बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़की इस लड़ाई को जीत गई। आप जानना चाहेंगे आखिर ये कौन थी। इस महिला का नाम है किंकरी देवी। जी हाँ दोस्तों, किंकरी देवी। ये लड़ाई उसने लड़ी हिमाचल के एक छोटे से गांव से, और इस काम के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया, जाना गया और उसकी तारीफ हुई। 1999 में किंकरी देवी को स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किंकरी के पास कुछ भी नहीं था, बस था तो उसका दिल, उसकी विल पावर, उसका विश्वास और कुदरत के लिए उसके दिल में जो बेपनाह मोहब्बत थी, जो बेपनाह प्यार था, उस प्यार की वजह से उसने लड़ने की जिद ठान ली पूरे सिस्टम से, पूरी दुनिया से, सबसे, और आखिर में जीत हासिल की। तो इसी के साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान आपसे विदा लेता हूं। हमारी साथी आरजे शिल्पा जी स्टूडियो में आ चुकी हैं और अगले स्लॉट में आपके साथ रहेंगी। लता जी की आवाज़ में दो गाने बैक टू बैक, बहुत ही खूबसूरत गाने। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 11 बजे का वक्त हो गया है। इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। वे कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे में परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कल कैबिनेट बुनियादी ढांचा समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेट्रो लाइन 13 और पुणे रिंग रोड के विस्तार को मंजूरी दी गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3-4 घंटों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। हालांकि विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार पुणे और रायगढ़ में इस दौरान मध्यम बारिश हो सकती है। समाचारों के अंत में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में चुनौती पेश करेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला अमेरिका के गैरेट टेन से होगा। आयुष शेट्टी आज श्रीलंका के डी एबे विक्रम से खेलेंगे। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर 10:11:07 का वक्त हो गया है और ब्रेक फ्री लेकर जो है मैं हाजिर हो गई हूँ शिल्पा आप लोगों के संग. 2 बजे तक हमारा साथ जो है वो बना रहेगा और जब भी मैं आती हूँ कुछ ना कुछ म्यूज़िकल गेम जो है वो हम खेलते हैं. कल ही हमारी इनफैक्ट मुलाकात हुई थी और ऐसे बहुत रेयर होता है कि इतनी जल्दी मतलब लिटरली इतनी जल्दी जो है वो आ जाए यहाँ पर. तो चलिए अभी क्या करना है, गेम तो आपको डेफिनेटली पता है कि 2 गानों की धुनें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलाकर सुनाई जाएंगी. आपको उन दोनों गानों को जो है वो पहचानना है और मुझे 8657661071 इस नंबर पे मैसेज करना है.

बताइए कौन से दो गाने हैं इस एक क्लिप में। फिलहाल जसविंदर जी और सोनू निगम साहब की आवाज़ में एक सुंदर सा गाना आप लोगों के लिए आ रहा है। कुछ कहना है तो भी मैसेज कर सकते हैं 8656-1071 पर, और नहीं कहना है, जवाब भेजना है तब भी जो है वो कर सकते हैं, और कुछ नहीं भेजना है तो आराम से जो है वो चिल करके जो है वो सुन सकते हैं।

0: अर्घा कनेक्टिविटी पूरे भारत की BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में 200 Mbps 25 OTT 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग सीमित अवधि का ऑफर अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-444 पर कॉल करें BSNL हर परिवार का भरोसा
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग
1: मोबाइल बैंकिंग
2: व्हाट्सएप बैंकिंग
1: ई KYC

0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: Cosmos RuPay और Visa Debit Card.
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos Bank में जरूर होना चाहिए.
0: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.

विशाल दत्तानी की आवाज़ में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म से सुना गाना। 11:19 का वक्त हो गया है, ब्रेक फ्री चल रहा है, शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं। और राइट आंसर दिया है प्रणव जी ने, प्रकाश जी ने, नितिन ने और राकेश माथुर जी ने, और काफ़ी सारे लोगों ने एक गाना जो है वो पहचान लिया है। यस, लेकिन कौन से दो गाने हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अब कौन सी क्लिप जो है वो आने वाली है। इसमें ड्यूरेशन कम है, 20 सेकेंड्स ही है, तो लिटरली गौर से ऐसा कान लगाकर जो है वो सुनिएगा। एक धुन है जिसमें दो गाने हैं, आपको दोनों गानों को जो है वो पहचानना है।

बताइए कौन से दो गाने मिले हुए हैं। 8657661 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से मैसेज करें। अगर कुछ कहना है तो भी इसी नंबर पर जो है वो भेज दें विस्तार से। अभी के लिए सोनू निगम सहार सर की आवाज़ में क्याली जो है वो भी गाएंगी। एक गाना तो ये था और एक गाना इसके बाद प्ले होगा जिनकी धुन मिलाकर आप

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: म्यूजिकल योर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 11:30 बजे का वक्त हो गया है. ब्रेक फ्री पर बने हुए हैं आप सभी शिल्पा के संग और बहुत सारे लोगों को इस क्लिप को दोबारा जो है वो सुनना है. हालांकि ड्यूरेशन कम है 20 से.

सेकेंड्स ही होते हैं पहचानने के लिए. राइट आंसर आ गए हैं कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोग और एक प्रयास करना चाहते हैं. तो चलिए आप लोगों के लिए दो गानों की मिली हुई धुन जो है यहाँ पर पेश है, इसे पहचाने और 8 5 7 6 6 1 0 7 1 पर मैसेज करें.

बताइए कौन से दो गाने हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है अभी के लिए। उदित जी और अलका जी की आवाज़ में चलते चलते का ये गाना सुनते हैं और इस गाने के उस पार जो है वो राइट आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है।

भक्त वृद्धि चल रहा है, गला अभी भी अच्छे से ठीक जो है वो नहीं हुआ है, फिर भी पूरी कोशिश है कि आवाज़ जो है वो सुरीली निकले आप सबके लिए। ओके, तो यहाँ पर कई सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, और दिलेश जी जिन्होंने भंडारा से मैसेज करा है, उन्होंने बड़ा क्यूट मैसेज भेजा है मुझे कि मैंने दोनों गाने पहचाने, फिर इन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया है, मैंने उनको पूछा तो बताइए, तो उसके बाद उन्होंने मैसेज करा है कि लेकिन वो याद नहीं आ रहे। यस, ऐसे भी मैसेजेस जो है वो थ्रिल चलता है शो के बीच में, थ्रिल सस्पेंस सब जो है वो होता है। और राइट आंसर किन किन लोगों ने दिया है, नितिन जी ने, इसके अलावा राकेश माथुर जी ने, प्रकाश शिंदे जी ने, प्राशिक बोरकर इस वक्त काम पर हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, एक गाना तो उन्होंने पहचान लिया है। ओके, मुकेश वालिया जी ने भी मैसेज किया है, लेकिन आई थिंक यस इन्होंने गेस नहीं किया है। सीटी वाले गाने क्या लिखा है, मैं रुकिए पढ़ती हूँ सर एक मिनट। चंदन जी ने भी एक गाना पहचान लिया, इनफैक्ट एक गाना बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया है, तो हम दोनों गानों का जिक्र करेंगे, इनफैक्ट पूरे के पूरे प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली धुन आने वाली है आप लोगों के लिए। दो गाने मिले हैं जैसा आपको पता है, आपको पहचानना है, इसमें भी 20 सेकंड हैं।

बताइए कौन से, मुझे डर ये लगता है खौफ कि कहीं गाना ही जो है वो बोलना शुरू ना कर दे. ओके अगर पहचान लिया है तो मैसेज कर दे, नंबर जो है वो आप लोगों को पता है 8657661071. और इसके अलावा कुछ कहना हो तो उसके लिए भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं. और मैं काम करती हूँ ना, वो दोनों गाने जिनकी धुनें मैंने आपको सुनाई थी वो दोनों आपको एक साथ सुनाती हूँ और फिर आपको समझ आएगा कि दूसरा वाला जो मैक्सिमम लोगों ने गेस नहीं करा है वो ऐसे देखो समझ आएगा. धुन मिक्स होती है तो ऐसी हो जाती है. अरे मेरे को पूरा आइडिया, अब सुनो कौन सा वाला है. तो मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं था कैसी, ये थोड़ा कम भी होता है प्ले एक्चुअली में, बड़ा अच्छा गाना है.

सुंदर सा गाना ब्रेक फ्री पर सुना। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पर एक गेम चल रहा है, दो गानों को मिलाकर एक धुन जो है वो आप लोगों को सुनाई जा रही है। आपको उन दोनों गानों को जो है वो पहचानना होता है और मुझे मैसेज करना होता है। और ये वाली धुन जो है 20 सेकंड की थी और बहुत सारे लोगों ने, एक गाना तो काफ़ी आसान हो जाता है आई फील पहचानना, और उसके मुझे सारे गाने जो है वो ऐसा रिवाइंड करा दिए कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं ये तो होगा ही होगा ऐसे करके। वो एक्चुअली में कंफ्यूजन भी है क्योंकि ना वो बीट्स इतनी

मिलर है उस फिल्म के गानों की, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो डेफिनेटली होता है. ठीक है, तो अभी चैलेंज जो है वो दूसरे के लिए है. दूसरा वाला गाना जो है वो बहुत ही कमाल के दो सिंगर हैं, मेल और फीमेल, बहुत ही कमाल के. मतलब मैं इससे ज़्यादा हिंट दूंगी ना तो आई गेस जो है वो बेईमानी सी जो हो जाएगी खेल के साथ. तो सुने, और गाना बहुत हिट है. फिल्म जो है ठीक थी, मतलब ठीक ठाक अच्छी थी. गाने इसके सारे के सारे जो है वो हिट हैं. तो अब कान लगा के सुने कि कौन सा, पहला वाला तो आ गया है ना, दूसरे वाले के लिए चैलेंज है.

देखिए, एक मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो एक हिंट और मैं दे सकती हूँ कि इसमें जो फीमेल सिंगर है वो मेरे नाम से उनका नाम जो है वो आता है। अब इससे ज़्यादा जो है वो हिंट मैं नहीं दूंगी, ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बता दिया है मैंने। चलिए, इस गाने के उस पार जो है वो राइट आंसर आ जाएगा 8658661071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करिए, नहीं पहचान पाए तो भी, अगर ऑफिस में है तो बिल्कुल दिमाग पे जोर मत दीजिए, मेरे वजह से कुछ काम वाम गड़बड़ मत कर दीजिएगा फाइल इधर उधर, है ना। तो अभी भी लाल गाना गाने इन्जॉय करिए। कविता जी आ गई है भैया।

11:56 का वक्त हो गया है। ब्रेक भी पर बने हुए हैं आप सभी शिल्पा के संग। प्रकाश शिंदे जी ने सही जवाब जो है वो दिया है। आकांक्षा मनोज सिन्हा ने राइट आंसर दिया है। पंकज मोहोड़ जी ने, सारिका जी ने, और राकेश माथुर जी का भी आया है। नहीं राकेश जी, ये द ट्रेन का गाना नहीं है। पहले मैं काम करती हूँ ना, वो जो दूसरा गाना जो लोगों को आप सबको समझ नहीं आया, पहले उसकी एक थोड़ी सी, अब शायद सिग्नल में आप समझ पाएंगे कि कौन सा गाना है। लेकिन पूरा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि अभी कट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसको 12 बजे के पास जो है वो सुनाया जाएगा। आई होप मैंने किसी का नाम जो है वो मिस नहीं किया है। ओके, प्रकाश शिंदे जी, प्रणव शिंदे जी, इन दोनों ने दिया है। पंकज मोहोड़ जी, सारिका जी, इसके अलावा आकांक्षा, यस, इन सारे लोगों ने राइट आंसर जो है वो दिया है। चलिए अभी झटपट एक गाना जो है वो और सुन लेते हैं, और उसके बाद वो दो गाने जिनकी धुन आप लोगों को सुनाई गई थी दोनों आएंगे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे का वक्त हो गया है। इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। राज्य सरकार ने सर्पदंश सांप के काटने को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, जिसके तहत सभी अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सर्पदंश के प्रत्येक संदिग्ध या पुष्ट मामले तथा इससे होने वाली हर मौत की सूचना देना अनिवार्य होगा। यह कदम गढ़चिरौली जिले के जपतालई गांव में आवासीय विद्यालय में जहरीले सांप के काटने से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत के बाद उठाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं। यह दौरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक ISMR के तहत दोनों देशों के बीच जारी उच्च स्तरीय संवाद का हिस्सा है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो तथा मकाओ के लियोन ई ओक चोंग और एनजी वेंगची के बीच दूसरा दौर का मैच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-11 से जीत लिया है। समाचारों के अंत में, पुणे जिले में एक व्यक्ति ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना कल दोपहर जुन्नर तहसील के पिंपलवाड़ी गांव में हुई। पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

के अंशुलपा राव की आवाज़ में बचना ए हसीनो फिल्म से गाना सुना। 12:08 का वक्त तो हो गया है, इसी गाने के साथ शुरुआत हो चुकी है म्यूज़िक कैफ़े की। मैं हूँ आप लोगों के साथ में शिल्पा, और पिछले घंटे जो खेल खेला है उसमें मज़ा ही आ गया, क्योंकि आज ना ऐसा हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ है कि मतलब कभी ऐसे होता है कि जो निरंतर मतलब हमेशा ही जिन्होंने सही जवाब दिया वो चूक गए, और कभी जो है वो दूसरे किसी लिसनर ने जो है वो कैच कर लिया, तो उसमें मज़ा इसलिए आता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है कि अरे नहीं नहीं कभी कोई गाना हो सकता है जो है ना पहचाना जाए। तो एक एक गाने जो है बहुत सारे लोगों ने गेस किए, तो उन सब के नाम जो है मैं यहाँ पर लेती हूँ। और कुछ लोगों ने ऐसे ही रैंडम मैसेजेस करे हैं, संजय दर्शन जी ने, राम प्रजापति, विजेंद्र जी घाटोल, नहीं विजेंद्र जी अकोला से, पंकज मोहोड़ जी, प्राशिक बोरकर, दीपा पालकर, मुकेश जी, नितिन जी बाबा दादा से, राकेश माथुर जी, आकांक्षा, श्रेया राउत, प्रकाश शिंदे जी, शुभ लक्ष्मी जी, सारिका जी, प्रणव शिंदे जी, गोपाल जी नांदोरा से, धनंजय जी, दिलेश जी, चंदन जी, प्रमोद जी, फरमान जी, अंजू जी, शुभदा जी, अजय साखरे जी, दिलीप पाटिल जी, यशवंत आटमुटे, एन एम पाटिल, राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच, अमित भगत जी, इनफैक्ट यस यस यस, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। चलिए आप सबके लिए एक गाना यहाँ पर, उदित जी और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, विवाह फिल्म से हो चुका है प्ले। और इस घंटे थोड़ा वक्त कम है, क्यों कम है बताऊँगी मैं तो इसीलिए

जो दूसरा खेला खेलते हैं क्लिष्ट हिंदी वाला, वो अभी इस घंटे तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एक दो गाने जो है वो हो पाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए अभी म्यूज़िक फुल ऑन एंजॉय करिए। कुछ कहना हो 8657 6617 1 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, बिंदास मैसेज

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट

0: सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मनोरंजन पूरे परिवार का, कनेक्टिविटी पूरे भारत की, BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT, 1199 रुपए वाला प्लान अब पाइस सिर्फ 1111 में, 200 Mbps, 25 OTT, 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग, सीमित अवधि का ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800444 पर कॉल करें। BSNL, हर परिवार का भरोसा।

KK सर की आवाज़, समीर साहब का लिखा हुआ एक गाना है, हरीश जयराज जी की कॉम्पोजिशन पर रहना है तेरे दिल में। 12:21 का वक्त हो गया है, म्यूजिक कैफे पर आप सभी बने हुए हैं शिल्पा के संग। और जब गला खराब होता है तो आवाज़ के कई सारे वेरिएशन, हम ऐसे कोशिश करें कि अच्छा हमारी जो वॉइस है उसमें हम अलग अलग सुर तो नहीं गएंगे, लेकिन एक वेरिएशन होता है ना आवाज़ का, तो वो आ जाए तो वैसे नहीं आता। लेकिन अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो गला ख़राब होता है तो भाई सुबह अलग, दोपहर में अलग और शाम को अलग, मुझे ऐसा ही अनुभव जो है वो इन दिनों हो रहा है। चलिए अभी के लिए कुमार सर और कविता जी दोनों मिलकर गाएंगे महबूब साहब का लिखा हुआ ये गाना, हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म से।

और श्रेया घोषाल की आवाज़। 12:30 का वक्त हो गया है, म्यूज़िक कैफ़े पर बने हुए हैं आप सभी। लेकिन अभी वक्त हो रहा है हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम NCERT उमंग का, जो लगभग आधा घंटा चलेगा और उसके बाद जो है वो हम मुलाकात करते हैं यहीं FM रेनबो म्यूज़िकली योर्स पर।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिम्पल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
2: जी,
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
3: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
2: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
3: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
2: जी,
3: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
2: जी,
3: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
2: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
3: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
2: जी,
3: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
2: जी,
3: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
2: जी,
3: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
2: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
3: श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
2: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
3: मार्केटिंग गुरु
2: या म्यूजिक गुरु।
3: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह

0: अनंतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आँख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है। मैं नीचे क्यों जाऊँ?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधारा

0: धाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
1: अरे, अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
2: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
3: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
1: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
2: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
2: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टानें मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
3: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
3: डरो मत।
1: हाँ?
3: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
2: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़

0: खुशी से झूमने लगते हैं। पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं। शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूं।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
0: मां धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहां तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
0: अच्छा,
2: तू रुकती तो जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
0: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी।
2: नहीं,

0: हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
1: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
2: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
3: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
2: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
1: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
2: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, नी। हाँ, पा नी।
4: नी।
2: एक बार फिर कोशिश करो।
4: पा।
2: हाँ,
4: नी।
3: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
1: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
2: मिसेस केलर
5: जी,
2: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
5: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: हेलेन शाबाश हेलेन मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिसेस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: मिसेस केलर
1: हेलेन बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

म्यूजिकली और 107.1 FM रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे हमारा स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। और बस अब कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार मराठी में और 1:05 पर मुलाकात होगी हिट एंड हॉट के साथ।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours
1: 107.1 FM Rainbow पर 1:05 का वक्त हो गया है. अभी आप सुन रहे थे 4:15 और अब यहाँ पर हिट एंड हॉट की शुरुआत होने वाली है और म्यूजिक पीछे से सुनाई दे रहा है. जिसकी भी फरमाइश है, जिसकी भी नहीं, नाम बताऊंगी बाकायदा. गोपाल सपकाल जी, जिन्होंने नांदूरा से मैसेज किया है. आप भी भेज सकते हैं 8656601071 एंड

सच में बहुत सारे गाने जो है वो रिपीट रिक्वेस्ट आती हैं, मतलब कल भी वही भेजे होते हैं गाने, परसों भी जो है वो वही भेजे होते हैं और सुने होते हैं हमने, मतलब लिटरली कभी कभी तो एक दिन में भी दो बार जो है वो सेम गाने होते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जो गाने बहुत अरसे से नहीं सुने हैं वो भेजें और ऑप्शन के साथ भेजें, ठीक है। चलिए अभी के लिए अलका जी की आवाज़ में धड़कन फिल्म का ये गाना आप सबके लिए है।

0: और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब।
1: ये मौसम का जादू है
0: चेतन कुमार जी को मौसम का गाना सुनना था और डॉक्टर अंजू जी को और पंकज मोहर जी को हम आपके हैं कौन का गाना सुनना था, तो मैंने तीनों को क्लब करके जो है वो ये गाना प्ले कर दिया। ऐसे करना पड़ता है वरना बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन कई सारे लिसनर कहते हैं हमारा गाना जो है वो प्ले ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब सबका नंबर आता है ना। ऐसा थोड़े होता है कि कोई दो हफ्तों से मैसेज कर रहा है हम उनका जो है वो नहीं है, ऐसा कोई पर्पसली थोड़ी, हम तो यहाँ गाना प्ले करने ही बैठे हैं सच में। चलिए अभी के लिए आकांक्षा आपके लिए ये वाला गाना।

ऑलराइट, 107.1 FM रेनबो पर 1:25 का वक्त हो गया है, हिट एंड हॉट पर बने हुए हैं आप सभी। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर गाने

प्ले हो रहे हैं और ये वाला गाना जॉन रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो की रिक्वेस्ट पर था प्ले, और अब अगली फरमाइश जो है वो सारिका जी की आ रही है। और बस 1:30 पर आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार, और 1:40 पर मुलाकात होगी हिडन हॉट को कंटिन्यू करेंगे।

राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट पर हुआ ये गाना प्ले। 1:50 का वक्त हो गया है, हिडन हॉट चल रहा है, शिल्पा के संग आप बने हुए हैं। और अब आई थिंक डेढ़ गाना नहीं, एक्चुअली दो ही आएंगे, लेकिन एक जो है मैंने म्यूज़िक का पीस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक अपॉर्चुनिटी होती है जो छोटे ड्यूरेशन के गाने होते हैं, 2 मिनट के 1.5 मिनट के, तो एक नया जो है वो मुझे मिला है। नया तो नहीं, बहुत बार सुना है आपने, वो फुल वर्जन में सुना है, लेकिन उसका उतना था छोटा पीस जो है आई थिंक अब तक मेरे ख्याल से नहीं सुना हुआ, एटलीस्ट मेरे शो में तो प्ले नहीं हुआ, तो वो आप डेफिनेटली सुनेंगे। मीनवाइल कुछ नहीं, अभी कितने सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं, धनंजय जी, शेयर राउत बाबा दादर से, प्राशिक बोरकर, मनीष पाटिल जी, राम प्रजापति जी, ओंकार काटकर जी, भूषण जी, भूषण सोनावने, दिग्दर्शन जी, कविता जी, सारिका जी, संदीप कुमार, प्रमोद जी, गोपाल सपकाल जी नांदोरा से, राजेंद्र परमार जी, दीपा पालकर जी, फिरोजगनपुरिया, शुभदा जी, स्वर्ण सिंह, शुभा लक्ष्मी, अंजू जी अंधेरी से, राजेंद्र शर्मा, संदीप जी यवतमाल से, प्रणव शिंदे, अशोक पाटिल, उसके अलावा अजय साखरे जी, इसके अलावा जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस, आकांक्षा, नितिन जी, हीरामणि जी, अमित भगत, विजेंद्र जी, मुकेश कश्यप, गजानन शिंदे, जय गावंडे यवतमाल से, यशवंत

प्रकाश शिंदे जी, राकेश माथुर जी, अभिजीत जी, मेहर अरोरा जी, बेंजामिन संजय दर्शन, चेतन कुमार, मुकेश वालिया, पंकज मोहोड़ और अनिल कामले जी हिंगोली से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मैसेजेस करते रहा करिए, अच्छा लगता है। हमारी ऊर्जा जो है वो इन्हीं संदेशों के ज़रिए जो है वो बनी रहती है। अभी एक गाना ये प्रकाश शिंदे जी की रिक्वेस्ट पर हो रहा है प्ले, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। मेरी आपकी मुलाकात नेक्स्ट मंथ होगी यहीं FM रेनबो पर। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छी रील्स जो है फॉरवर्ड करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न हैं। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडराफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
7: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में

75 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाओ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। आप हमें 107.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुन रहे हैं। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस बुधवार के दिन आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे और बिल्कुल ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जो करने के बाद आपका दिल जो है सुकून पाता होगा और ये कहता होगा दैट लव लाइफ एंड लव लव यू बैक। यही कहता है लव यू जिंदगी। और साथ ही साथ क्योंकि श्रावण चल रहा है और श्रावण मनाया जा रहा है, तो भाई मन में ये विचार आया, ये ख्याल आया कि क्यों ना आप सभी के लिए एक ऐसा गाना प्ले करूं आते ही जिससे आपका दिल जो है प्रसन्न हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी भावनाओं से भर जाए। तो भाई इसी बात पर आप सभी के लिए इस घंटे का पहला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ और उसके बाद शुरुआत करेंगे और आएंगे उस बात पर जिसे हम कह सकते हैं कि मुद्दे की बात, यानी आज लव यू जिंदगी में वो कौन सी बात है जो मैं आपसे साझा करने वाली हूँ जिसे सुनकर और महसूस करके आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ एंड लाइफ लव यू बैक, क्योंकि यही कहता है लव यू जिंदगी। तो उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार, बने रहे, सुनते रहे। आप हैं 107.1 FM रेनबो पर, मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ रहूंगी रात के 8 बजे तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, लव यू जिंदगी चल रहा है। और जैसे मैंने आप सभी से कहा कि श्रावण जल रहा है, तो भाई महादेव के गाने सुनना तो बनता है। और जब इतने प्यारे और इतने दमदार हो गाने, तो भाई हम सेट हो जाते हैं शाम के लिए। तो भाई इस घंटे आप भी सेटल हो जाइए और मैं भी सेटल हो गई इन गानों को सुनकर। और अब आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह सुबह उस बेचारे टूथपेस्ट ट्यूब का गला इतने गुस्से में क्यों दबाते हैं? भाई आप कहेंगे ना ही सुबह है और ना ही टूथपेस्ट का गला दबाया जा रहा है, लेकिन मैं क्योंकि बैठे बैठे सोच रही थी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम जो है रोज उस टूथपेस्ट की तरफ जब देखते हैं तो हमें बस यही सूझता है कि दबाकर वो पेस्ट निकालना है ना, तो पूरा फोकस उस पे होता है। और फिर जब वो खत्म होने को होता है तो हम कहाँ कहाँ से उसको दबाकर उसके अंदर से पेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये ऐसा क्यों होता है? और सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा होता है कि शाम को हमारा मूड ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि दिन खत्म होने को होता है, और सुबह सुबह जरा मूड ठीक नहीं होता क्योंकि भाई काम पे जाना है, बहुत सारे काम करने, कहीं ऐसा तो नहीं है? या फिर उस महंगी क्रीम की बोतल का ये भी मैं सोच रही थी कि जब हम क्रीम्स की बात करते हैं तो ये महंगी क्रीम की बोतल को तब तक उसका हम पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि हम हर तरफ से उसको निकाल ना ले, उसकी आखिरी सांस वो छोड़ दे, तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए आज रो

रोज रोज के इन घरेलू ड्रामों के पीछे छिपे मजेदार विज्ञान को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। तो भाई ये विज्ञान की क्लास है नहीं, लेकिन ये भाई बातें जो होती है ना, वो हमें ये याद दिलाती है कि कितना कुछ है जीवन में शुक्रगुजार होने को, और अगर हम कुछ करते हैं तो क्यों करते हैं। भाई जो भी हो, बात कुल मिलाकर इतनी है कि जिंदगी जो है बड़ी ही खूबसूरत है। और हम देखिए, हमारे पापा मम्मी और कोई रिश्तेदार होते हैं ना, हम इन्हें उन्हीं आदतों से ज्यादा याद करते हैं जब वो नहीं होते हमारे बीच। जैसे कि मुझे अक्सर याद आता है कि मेरे पापा जो अगर मैं कोई चीज ले आती तो उसका मुझे सबसे पहले तो दाम पूछते, ये नहीं कि इसका काम क्या है। और फिर और कोई मेरे चाचा जो थे, मेरी जो दादी थी, उसे आदत थी कोई भी मैं नया कपड़ा ले आऊं तो उसे छूती, फिर पूछती कि ये क्या है, कौन सा कपड़ा है, फिर पूछती ये कहाँ से आया, और तीसरा सवाल होता है इसका दाम क्या है। तो भाई ये चीजें याद आती हैं जब वो नहीं होते, लेकिन ये भी याद आता है कि वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम बहुत ज्यादा तनाव के बारे में ना सोचकर उसकी खूबसूरती पर और इन सारी बातों पर अगर गौर करें तो। तो चलिए आज हम बातों पर गौर करेंगे और हमारी जो शाम है ना, इसे और ज्यादा खूबसूरत करेंगे। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो, लव यू जिंदगी चल रहा है और भाई बातें हो रही हैं उन चीजों की जो हम सुबह सुबह अक्सर करते हैं और फिर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये हमने क्यों किया। और ये वैसी चीजें होती हैं जो यूं तो नादान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम करते क्यों है, कि कभी कभी फिर हमें लगता है ना, गिल्ट फील होने लगती है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इतनी कंजूसी और इतना ये वगैरह। लेकिन क्या ये वाकई कंजूसी है, ये तो सोचने वाली बात है ना। और भाई दिन के खत्म होते होते चीजों के बारे में सोचना ये कितनी अच्छी बात है, ताकि अगली सुबह आपको ये सवाल ना पड़े। भाई ये तो मजाक का हिस्सा रहा, लेकिन दोस्तों असल में हमारी सुबह की शुरुआत कराने वाला ये जो टूथपेस्ट ना, जिसे हम दबा दबा के निकालते हैं, तो कोई सीधा साधा लिक्विड नहीं है ये, बल्कि ये बड़ा ही नखरेबाज निकला, ऐसा आपको महसूस होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में कहें तो टूथपेस्ट और गाढ़े बॉडी लोशन जैसी चीजें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होती हैं, और ये अजीब दुनिया का हिस्सा होती है, ये एक अजीब दुनिया है बाय इटसेल्फ। इसका सीधा मतलब ये है कि आलसी चीजें आराम से बैठे बैठे बिल्कुल किसी ठोस पत्थर की तरह बर्ताव करती है, जब तक आप इन पर जोर से दबाव यानी फोर्स नहीं डालते, ये अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं लेती। अब और क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएंगी, पर भाई ये दिल जरूर कहता है कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में ना आए तो बात बन जाए। यानी ऐसे टूथपेस्ट जो निकलते ही नहीं है ट्यूब से, या ऐसे लोशन जो वहीं के वहीं धरे के धरे पड़े के पड़े रह जाते हैं, क्या कहते हैं आप। चलिए तो ये मशहूर गाना हम सुनते हैं नए अंदाज में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

लव यू जिंदगी चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। और भाई लव यू जिंदगी कहता है लाइफ लव लाइफ एंड लाइफ विल लव यू बैक। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई जिंदगी से अगर आप प्यार मोहब्बत करेंगे तो जिंदगी आपसे कई गुना ज्यादा प्यार मोहब्बत करेगी रिटर्न। और ये वाकई सच है बताए दोस्तों। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सभी से उसी चीज पर बात की जाए कि जिस चीज के पीछे हम पड़ जाते हैं भाई, फिर वो लोग हो, टूथपेस्ट का ट्यूब हो, वो लोशन का डिब्बा हो, या फिर परफ्यूम की शीशी हो। अब ये सारी बातें कैसे कनेक्टेड है भाई? वो ऐसे कनेक्टेड है कि विचार तो भाई आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं क्यों काम नहीं हो रहा। जब भी कोई काम हम करना चाहते हैं, मान लीजिए हम नया टूथपेस्ट लाना भूल गए तो वही पुराना वाना वाला हम दबाए जा रहे हैं हर कोने से, हर एंगल से। तो भाई थोड़ा सा विज्ञान भी समझना जरूरी है कि भाई ये पेस्ट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वहां ऐसा जाके क्यों बैठा है। और ये भी समझना जरूरी है कि शायद अंदर ही अंदर हम परेशान हैं तो हम जो है इन चीजों को जोड़ देते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि हमें परेशान नहीं होना है। देखिए जब भी ऐसी कोई चीजें हो ना लाइफ में हो जाए तो फिर हमें भाई मुस्कुराना है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग, घर वाले, दोस्त, जो कोई है ना, जो बहुत ही उनका कोई टिपिकल चीज होती है ना, उनको याद करना चाहिए हमें हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया कि पापा का हमेशा का सवाल कि दाम कितना है कुछ भी लाए तो, दादी का वो सवाल, सीरीज ऑफ सवाल, सबसे पहले मटेरियल कौन सी है, उसके बाद इसका दाम क्या है, फलाना फलाना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें याद कीजिए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप गुस्सा नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि भाई ये होता है लाइफ में, और भी चीज़ें हैं परेशान होने के लिए, और आप हंस पड़ेंगे जिसकी ज़रूरत हमें सुबह शाम होती है। तो दोस्तों अब बात कहां पर आ पहुंची है, अब जरा उस खुशबू देने वाले परफ्यूम की, खूबसूरत शीशी की बात करते हैं जो ड्रेसिंग टेबल की शान बढ़ाती है। और एक एक का शेप देखो तो वाह भाई, एक से बढ़कर एक। परफ्यूम का लिक्विड बिल्कुल पानी जैसा पतला होता है ना, इसलिए उसके बाहर आने का अंदाज थोड़ा सा रॉयल और जादुई होता है। जब आप उसके नन्हे स्प्रे पंप को अपनी उंगली से दबाते हैं तो बोतल के भीतर अचानक तेज प्रेशर आता है, बनता है, और वही हवा का तगड़ा दबाव उस खुशबूदार पानी की पतली पाइप से उसे खींच कर सीधे हवा में मखमली फव्वारा बना देता है। तो दोस्तों लाइफ में ये भी एक चीज सीखने जैसी है ना कि हल्का सा अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो, हम देख रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं प्यार से उनसे बर्ताव कर सकते, क्यों नहीं हम उनको थोड़ा स्नेह, थोड़ा अपनापन दे सकते। जैसे हल्की सी प्रेशर आप मारते हैं इस परफ्यूम की शीशी पर और वो इतनी खूबसूरत आपको सुगंध देता है, तो वैसे ही जीवन में हमको भी रहना चाहिए है कि नहीं, कि भाई किसी को हमारी जरूरत हो तो उसके जीवन में थोड़ी सी खुशबू कुछ देर के लिए हम बिखेर दें। क्या सोचते हैं हम बताइए, और लव यू जिंदगी में बने रहें।

0: कभी लगता दूर है
1: ये
2: तो कभी लगता पास है।
1: मेरे, मेरे पास तो
3: रंगों में न जाने क्या बात है।
1: पल पल रंगते रंगते रंगते रंगते
2: दिल झूम उठा है अचानक ऐसे
0: जैसे कोई हर वक्त दिल के पास है।
4: ये मजा रंगों का है, सुमधुर गीतों का है,
2: क्योंकि ये है आपका अपना
3: 107.1 FM रेनबो, दिल से
2: दिल तक।

लव यू जिंदगी चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों बातें तो हमने की टूथपेस्ट के ट्यूब्स के बारे में, फिर लोशन या क्रीम के डिब्बों के बारे में, परफ्यूम के शीशियों के बारे में, पर अक्सर जो होता है ना कि बात जो लगती है वो नहीं होती, जो होती है वो लगती नहीं। तो भाई ये भी बातें कुछ वैसी ही थी जो मैंने आपको बताई ट्यूब्स और डिब्बों और शीशियों के बारे में, कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं बहुत उस पर प्रेशर डालना पड़ता है, ज़िद्दी होती है, अड़ियल होती हैं, तब जाकर वो हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं भाई वो ऐसे जगहों पर जाकर छुप जाती है कि उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो बांटने में ज़्यादा देर, ज़्यादा प्रेशर कुछ भी नहीं लगता, जैसे कि परफ्यूम की बोतल से निकलने वाला स्प्रे। तो भाई जिंदगी भी दोस्तों वैसी ही है ना कि कुछ चीज़ें जटिल है तो उन्हें थोड़ा सा जोर से और दबाव से हैंडल करना पड़ता है। कुछ चीज़ें और होती हैं जिन्हें थोड़ा सा एक टैक्टिक्स की जरूरत होती है, तो पैतरे से या किसी आइडिया से, युक्ति से आपको निकालना पड़ता है। और कुछ चीज़ें होती है बहुत सहज होती है, आसान होती है, और बस हल्के से दबाव की जरूरत होती है जिससे सारा माहौल जो है खुशबूदार और खुशनुमा बन जाता है। तो बस जिंदगी यही है और जिंदगी का फलसफा भी यही है। तो दोस्तों बातें ऐसी है ना कि अगर वैज्ञानिक रूप से सोचे तो

डिजाइन ही ऐसा होता है कि भाई कुछ कंपनियां बड़ी चालाकी से चीजें इस तरह से छुपा देती है अपने डिजाइन में। अगर आप टूथपेस्ट या लोशन का किसी खुले चौड़े डिब्बे में उसको रखेंगे तो हवा और कीटाणु उसे तुरंत खराब कर देंगे, इसलिए उसकी पैकेजिंग उस तरह होती है कि एक तरफा रास्ता जो है बंद रहे और फिर भी वो काम करती रहे, बाहर से गंदगी ना हो और अंदर जाने से गंदगी को रोक सके। इसलिए ये आपके महंगे और पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हर तरह से बैक्टीरिया से हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रखती है। जीवन भी दोस्तों इसी तरह है ना, कि हमें उसे उस तरह से डिजाइन करना है कि भाई जो चीजें अच्छी नहीं है, हमारे लिए गंदी है, वो हमारे अंदर ना आ सके, हमारे दिमाग के, हमारे जीवन के। जो चीजें अच्छी है वो भाई जो हम बांटना चाहते हैं वो आसानी से बांट सकें। और जिंदगी जो है बहुत ही सुंदर और इसी तरह से बहुत ही सहज तरीके से आगे बढ़ती रहे। तो बस जिंदगी का फलसफा दोस्तों यही है। और आप अगर इस तरह चीज़ों का, मैं कहती हूँ, चीज़ों को फॉलो करेंगे या ये चीज़ें मान लेंगे, समझ लेंगे और इन्हें अपने जीवन में ले आएंगे, तो भाई क्या ही प्रॉब्लम होगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि किस तरह जिंदगी को खूबसूरत बनाए हम धीरे धीरे, है ना। जैसे भाई ये देखिए, तारीफों से धीरे धीरे मना रहे हैं।

0: Oh, I hate making love songs.
1: आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ रहूंगी रात के 8 बजे तक। और भाई लव यू जिंदगी में कई सारी बातें आप सभी के साथ साझा की, आप सभी को पसंद भी आई, आपके कॉल्स मुझे आए, मुझे इब्राहिम और पंकज मोहड़ इनके कॉल्स आए और इन्होंने बताया कि वाकई जिंदगी ऐसी ही होती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि जैसे वो खत्म होते उस टूथपेस्ट के ट्यूब की तरह आप किसी पर दबाव बना रहे हैं, तो कभी कभी किसी किसी केस में वो सही भी होता है। तो बुरा मत मानिए, अपने आप को सजा मत दीजिए उसके लिए। अगर आपको कभी लगता है कि आपका कोई अपना कहीं छुप गया है उस डिब्बे में बचे हुए लोशन की तरह और आप कोशिश करें उसे बाहर निकालने की, तो आप गलत नहीं कर रहे हैं। आपका यह प्रयास है कि जो आपका अपना है वो कहीं गुमनामी में खो ना जाए। तो इसलिए अपने आप को गिल्टी मत समझिए और बस वैसे ही अगर आपको सभी को थोड़ी सी खुशबू देने में कुछ आपको हिचकिचाहट महसूस हो रही हो तो वो भी मत कीजिए। याद रखिए, रिश्तों को जो है फलने फूलने के लिए उस प्यार की, उस थोड़े से पुश की और उस बौछार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बस लव यू जिंदगी यही कहता है कि लव लाइफ एंड लाइफ विल लव यू बैक। तो जिंदगी से प्यार करने के, मोहब्बत करने के और क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं ये कि भाई हर चीज अगर हम एक बहुत ही मस्त से सुंदर से बैलेंस में करें तो बस हो गया, यही है जीवन। तो दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं लव यू जिंदगी चलता है 6:05 तक, तो आखिरी दो गाने आप सभी के लिए बाकी हैं। पर एक नज़र हमारे सारे श्रोताओं के मैसेजेस पर। देखिए, मुझे मैसेज आया पुणे से राकेश माथुर जी का, संजय दर्शन जी का भी मैसेज आया है, अशोक पाटिल जी वर्ली से मैसेज करते हैं, शुभदा जी का मैसेज आया है, वाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चाय भेजी है तो उसके लिए धन्यवाद। रजनीकांत पाटिल जी वार्ड वन से हमें मैसेज करते हैं, अजय साखरे जी इंदौर से, प्रणव शिंदे जी बहुत सारी चीजें लिखते हैं जिसे हम आप सभी के साथ साझा करेंगे हम तुम में। और आगे जो है वैदेही हमें लिखती है बहुत सारी बातें और इन्होंने लिखा है कि भाई तारीफों से वगैरह ये सारे गाने बहुत ही अच्छे लगे उन्हें और बातें भी, धन्यवाद। पंकज मोहड़ जी ने भी हमें कॉल किया और मैसेज भी किया। और यहाँ पर दीपा पालकर जी का हमें मैसेज आया हुआ है, अंजू जी, डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से हमें मैसेज करती है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मैं नाम नहीं पढ़ रहा है, हाँ मिल गया मुझे नाम, रसिक महात्रे नारंगी अलीबाग से हमें मैसेज करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, यूं ही हमारे साथ बने रहे, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा, दिल से दिल तक और म्यूजिकली योर्स। तो ये गाना आप सभी के नाम बड़ा ही खूबसूरत, जीवन का फलसफा भी, दिल का हाल भी, वही क्या नहीं है इस गाने में, वो जज्बात भी, वो अल्फाज भी। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो चैनल। अभी ठीक 6:05 से आप सुन सकेंगे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी।

एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। शायरों का अंदाज निराला और गजलों का असर सुहाना है। अंदाजे बया में दिल की बातों का ये सिलसिला रोजाना है। इस कारवां से जुड़ जाइए, महफिल का हिस्सा अगर बनना है। 107.1 एफएम रेनबो पर शायरी से समा बांधने वाले हैं, आपको यूं ही साथ रहना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर अंदाजे बयां। और भाई, ये जो महफिल है ये सजने वाली है धीरे धीरे। आपका साथ उसके लिए ज़रूरी है। और साथ साथ ये जो गाने हैं, कुछ शेरों के दिल से, कुछ कवियों के कलम से निकले हुए, आप सभी के लिए यहाँ पर पेशे खिदमत हैं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने

बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

बहुत अकल का बोझ उठा नहीं सकता। लिखते हैं अकबर इलाहाबादी, केश का नाजुक मिजाज है बहुत अकल का बोझ उठा नहीं सकता। वही ये अपने आप ही में मैं कहूंगी पूरी कहानी है, क्योंकि बहुत ही सटीक इन्होंने समझा और समझाया कि भाई इश्क का मिजाज इतना नाजुक होता है, उसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता। इंसान की अकल जो है वो भाई सही चलती नहीं, और भाई वो कोई बोझ उठा भी नहीं सकती। और इन्हीं का लिखा हुआ एक और शेर पेश खिदमत है। गजब है वो जिद्दी बड़े हो गए हैं, मैं लेटा तो उठ के खड़े हो गए। भाई वाह क्या बात है। लिखते हैं, गजब है वो जिद्दी बड़े हो गए, मैं लेटा तो उठ के खड़े हो गए। भाई इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे जिद्दी होते हैं कि आप जो भी करें वो बिल्कुल उसका उल्टा या विपरीत करते हैं, और भाई वो समझते नहीं चीजें कि भाई है क्या, कि आप उनके साथ होना चाहते हैं, बस किसी न किसी जिद पर उठकर खड़े हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो भाई ये बातें जो है ना, तमाम उम्र लग जाती है जो शायर अपनी शायरी में, अपने शेरों में लिख देते हैं, कह देते हैं।

0: सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको।
1: तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
0: दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको।
2: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।
0: जहाँ गम की हवा छू के भी ना गुजरे, खुदा वो जन्नत सी जमी दे आपको। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए 107.1 FM रेनबो के संग, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो। और अंदाजे बयां में शायरी, शेर और हमारे शायर, इनकी बातें चल रही हैं। और जैसे कि आप सभी से वादा किया था कि समा बांधेंगे, भाई अब देखिए माहौल कैसा है, समा कैसा है। कई लोगों के पसंदीदा शायर जॉन एलिया कहते हैं, कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। सोचिए किस तरह का दर्द है, किस तरह की तकलीफ है। देखभाल करने वाला कह रहा है कि भाई कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। यानी कि घर में कुछ बचा ही नहीं, एक एक करके घर जो है खाली होता जा रहा है। तो क्या आप समझे इसका मतलब कि शायर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही आसान शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि भाई रिश्ते की देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है, एक एक चीज जो है खराब होते जा रही है इस रिश्ते में। तो कुछ यूं ही समझा जा सकता है। और भाई जहां तक के घर की बात आती है, घर का देखभाल करने वाला तो चाहिए ही, और रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्तों में जो है वो नमी, वो प्यार, वो देखरेख, सारी चीजें होनी चाहिए ना। बस ये कहते हैं। और भी एक शेर है इनका लिखा हुआ, बस कुछ ही देर बाद आप सभी के लिए वो अर्ज करूंगी। तब तक बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

जॉन एलियास साहब ने कुछ और लिखा है खूबसूरत सा। कहते हैं, सोचता हूँ उसकी याद अब आखिर, सोचता हूँ उसकी याद अब आखिर, अब किसे रात भर जगाती है। वही रिश्ता खत्म होने के बाद की बात कही है शायर साहब ने। और भाई, अब कौन उसे याद करता होगा, कौन जागता होगा उसकी यादों में, कि भाई हम तो नहीं जागते, लेकिन जागते तो ये भी है ना। अंदाजे बयां बस खत्म हो रहा है इस गाने के साथ। आप सभी बने रहे 107.1 FM।

रेनबो पर ठीक 7 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार न्यूज स्टूडियो से, और फिर जो है 7:30 से 7:40 के बीच आप सुनेंगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 हाइलाइट्स। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो को आप 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम पर सुन रहे हैं और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी आप जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1000

44 kHz के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। आपके दिल की बातें, आपके मन पसंद गानों के साथ, हम तुम में वैशाली के साथ। तो इस घंटे चलेगा हम तुम और आपकी फरमाइशें आने लगी हैं, लेकिन जिन श्रोताओं को हम नहीं पता कि हमारे नंबर्स कौन से हैं, कॉन्टैक्ट हमें कैसे करना है, उनकी जानकारी के लिए बता दे कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 8657661071 और लैंडलाइन पर बातचीत करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 4515-4132, 4515-4133। तो सबसे पहले दोस्तों मेरी बात हुई अयाज चौधरी इनसे, और बात ऐसी है कि इनके जीवन में एक दुखद घटना घटी है। इनके पिता नहीं रहे, उनका देहांत हो गया शनिवार के दिन, और उन्हें याद कर रहे हैं, वो शोज नहीं सुन पा रहे, लेकिन ये उनको बताना था, मैसेज देना था और सारे श्रोता मित्रों तक पहुंचाना भी था, और ये भी बताना था कि वाकई ये समय जो है उनके लिए थोड़ा भारी चल रहा है, और क्योंकि हम सारे जो हैं मित्र परिवार है, तो इन्होंने अपने दुख के समय पर ये बात साझा की। और इनके पिताजी की याद में हम आज इनके लिए प्ले करने वाले हैं पापा मेरे पापा ये गाना। पंकज मोहर जी से मेरी बात हुई और इन्होंने कॉल किया, मैसेज भी हमें किया, बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने साझा की। एक और बात खास ये है कि ये जो है सारी शायरी लिख लेते हैं, सारी बातें लिख लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं, फिर हमें भेजते हैं, अमरावती से सुनते हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और आपने फरमाइश की है जिस गाने की, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, हाँ, अच्छा, आपने किसी गीत के बारे में लिखा है। अच्छा, फरमाइश इन्होंने कहा था कि ये जो है बहुत कम करेंगे, क्योंकि सारे श्रोता मित्र जो हैं वो अपने अपने गाने सुन सके, तो आपके लिए मैं डेफिनेटली एक गाना प्ले करूंगी दूसरे फरमाइश के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने जो है बहुत सारी बातें लिखी हैं और कहा कि उन्हें मिसाल बहुत अच्छी लगी कि जैसे खुशबू बढ़ाने वाला परफ्यूम बनना, और जो मैंने टूथपेस्ट की बात की थी वो सारी तमाम बातें। धन्यवाद आपका पंकज जी। और हमें मैसेज आया दीपा पालकर जी का भी, और इन्होंने लिखा है कि टूथपेस्ट के ट्यूब की कमाल, एक सुबह मैं हमारी टूथपेस्ट की ट्यूब से कुछ निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने फेंकने का सोचकर वो ट्यूब जो है कैंची से काट दिया, तो उसमें से 2-3 चम्मच भरकर टूथपेस्ट निकल आया। वाह, क्या बात, ऐसा होता है। मैंने कहा ना, इसलिए कुछ चीजें होती है वो जटिल होती है, उन पर प्रेशर डालना पड़ता है ताकि हमारा या उनका काम हो सके, और इसलिए मैंने आप सभी को वो मिसाल दी थी कि अगर ऐसा हो तो गिल्टी मत फील कीजिए कि भाई क्या कर रहे हैं हम वगैरह। कभी कभी कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ताकि चीजें सही से चले। तो ये लिखती है, सच है टूथपेस्ट ट्यूब पूरी आसानी से खाली नहीं कर सकते, लेकिन परफ्यूम जो है आसानी से खाली हो जाता है, और इंसान को परफ्यूम जैसा फ्लेक्सिबल और इजी रहना चाहिए। तो इनकी फरमाइश आज दिनचर्या में प्ले करने वाली हूं। और फिर अशोक पाटिल जी की वर्ली से फरमाइश है, जय जय शिव शंकर इस गाने की। राजेश मोरे भी इनके साथ बने हुए हैं, और जो है प्रणव शिंदे, इन्होंने भी कई सारी बातें लिखी हैं जो मैं बहुत जल्द साझा करूंगी। संजय दर्शन जी भी हमें सुन रहे हैं, और इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने बहुत संक्षिप्त में लिखा है तो आपको बता देती हूं कि इन्होंने लिखा है, बात करने का सलीका हो तो दिल जीत लेते हैं लोग, अंदाजे बयां ही तो है जो अपनों को करीब लाता है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगु क्या है। मिर्जा गालिब साहब का शेर इन्होंने शेयर किया और कहा कि जबरदस्त लगे गाने, खास करके सैया, धन्यवाद। और प्रणव शिंदे जी का मैसेज बहुत प्यारा और लंबा है, उसे बहुत जल्द हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। पूरी कोशिश हो रही है कि आपके गाने मैं ढूंढ सकूं और प्ले कर सकूं, पर अभी जो है थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि कुछ गाने मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन से गाने पहले प्ले होते हैं, लेकिन हाँ, दो गाने हमारे पास ऑलरेडी क्यूड है और अभी फिलहाल एक ही गाना प्ले हो पाएगा। तो देखिए, दो गाने हमारे पास क्यूड हैं और जैसे मैंने कहा कि प्रणव शिंदे, इनका मैसेज पढ़ना बाकी है। तो भाई, बात ऐसी है कि इन्होंने लिखा है कि टूथपेस्ट से याद आया कि कुछ साल पहले आकाशवाणी FM रेनबो पर एक शो पर आरजे मित्रों ने श्रोताओं से पूछा कि भाई आप कौन से रंग के टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग कलर की जानकारी दे दी। कहते हैं, मैंने भी बताया कि कलर कौन सा है मेरे टूथब्रश का जो इस्तेमाल करता हूँ। शो के आखिर में मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने जो है आरजे दोस्तों से पूछा ये प्रश्न कि आप क्यों पूछ रहे हैं कि टूथब्रश का रंग कौन सा है। तो लिखते हैं ये कि तभी जो है आरजे दोस्तों ने रेडियो पर ऑन एयर बोला, बताया कि बस हमें जानना था कि आप टूथब्रश यूज करते हैं या नहीं। तो बोलते हैं, मुझे भी बहुत हंसी आई, वाह क्या बात है, बहुत फनी सा ये किस्सा आपने बताया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज से, छोटी सी चीज से बहुत ज्यादा हंसी उमड़ पड़ती है और मजा आता है। तो ये और आगे हमें ये भी लिखते हैं कि एक टूथपेस्ट का महत्व तब तक है जब तक वो दांतों को साफ रखता है। हमारी जिंदगी का महत्व भी तब तक है जब तक हम दूसरों के काम आए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। तो ये सारी बातें हैं, वाह क्या बात है। और दबाव और संघर्ष से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके भेजे हुए रिक्वेस्ट में से एक मैं ज़रूर प्ले करूँगी। इन्होंने लिखा है कि नाराज़ फिल्म जो है ये, इसे 32 साल पूरे हो चुके हैं और हैप्पी भाग जाएगी, इसको 10 साल पूरे हुए हैं। तो एक गाना मैं ज़रूर इसमें से आपके लिए प्ले करूंगी। और पंकज मोहर जी, आपके लिए और जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए, जो अशोक पाटिल जी हैं, आप दोनों के लिए मैं जय जय शिव शंकर प्ले करने वाली हूँ। पर उससे पहले आप सभी के साथ मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ। हमारी आरजे आरती सैया ने भी हमें आज एक रिक्वेस्ट भेजी।

है और ये रिक्वेस्ट बहुत खास है। इन्होंने लिखा है कि आज डॉक्टर शांतनु मिश्रा का जन्मदिन है, मैंने इतने अच्छे डॉक्टर मेरी लाइफ में नहीं देखे जो दर्दी के दिल का दर्द जान के उस दर्द की दवा करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर शांतनु मिश्रा, ऐसी शुभकामनाएं आरजे आरती सैया मुंबई से भेजती हैं। तो डॉक्टर शांतनु मिश्रा को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं उनके लिए प्ले करने वाली हूँ तू जो मिला, क्योंकि ये इन्हें ये बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर और बहुत ही कमाल के इंसान मिले लाइफ में, जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा मदद हुई। तो डॉक्टर शांतनु मिश्रा को हैप्पी बर्थडे कहते हुए ये गाना हम प्ले कर रहे हैं।

हम तुम चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर। और भाई ये जारी रहा और हाइलाइट्स शायद कुछ देर बाद किसी और समय आप तक जरूर पहुंचेंगे, दिल्ली से प्रसारित होंगे। अभी फिलहाल जो है हम तुम चल रहा है और आप सभी की फरमाइश एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका इतना प्यार है और इतनी फरमाइशें हैं कि सारे अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है फिरोज सिकनपुरिया, इनकी फरमाइश आई हुई है और ये जो है बहुत पसंद कर रहे हैं प्लेलिस्ट और गाने और सारी तमाम चीज़ें। और कहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब का आज खास दिन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और उमराव जान का गाना इन्हें सुनना है। तो बिल्कुल हम आपके लिए गाना प्ले करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि हमारे जो तमाम श्रोता है उनमें से अगला जो है मैसेज किसका है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ राम प्रजापति जी वसई से हमें मैसेज करते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं। ये अवेलेबल होगा तो जरूर आपके लिए प्ले करूंगी। विजेंद्र घाटो

जी अकोला से हमें मैसेज करते हैं और लिखते हैं कि ये जो है गाना सुनना चाहते हैं तुम जो चले गए, तो मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल कि आपका गाना प्ले हो। अरविंद कुलकर्णी जी हमें यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं इचल करंजी से, और इन्होंने चार एक अपने ऑप्शंस दिए हैं गानों के, और मैं अगेन ट्राई करूंगी आपका गाना बिल्कुल प्ले हो। बाकी हमारे जो श्रोता है अजय साखरे जी इंदौर से, संजय पाटिल जी, सुनील गायकवाड़ जी जो है हमें सुन रहे हैं, और अशोक पाटिल जी भी सुन रहे हैं, सुनील और स्वप्नाली जोशी रत्नागिरी से सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं गाने। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अभी मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ उमराव जहां का एक गाना, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, हम तुम चल रहा है। और अभी जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ ये है संजय पाटिल, इनकी फरमाइश, और गीत का नाम है मोहब्बत बड़े काम की चीज है। और त्रिशूल फिल्म का ये गाना मलकापुर से संजय पाटिल, राजकुमार खर्चे, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय चौहान, इन्होंने फरमाइश की है। हमें जो है मैसेज आया अजय साखरे जी का भी इंदौर से, ये भी गाने की फरमाइश भेजते हैं। और ये मैं देख रही हूँ कि अभी तेरे नाम गाने की फरमाइश दो लोगों ने की है, एक विठल मूंग से है अहिल्या नगर से, इन्होंने फरमाइश भेजी है, और एक हमारे श्रोता ने भेजी है हीरामणि।

वर्मा जी ने भी तेरे नाम फिल्म की फरमाइश भेजी है, तो तेरे नाम फिल्म का एक गाना मैं प्ले बिल्कुल करूंगी, आप दोनों के लिए एक गाना प्ले करूंगी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। तो फिलहाल जो है मोहब्बत बड़े काम की चीज़, और उसके बाद जो है मैं प्ले करूंगी तेरे नाम का गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। हम तुम चल रहा है, मैं हूँ वैशाली और बस आखिरी कुछ गाने आप सभी के लिए प्ले होंगे। तो अभी मैं आप सभी के लिए प्ले करने वाली हूँ तेरे नाम फिल्म का गाना ओढ़नी हमारे दो श्रोताओं के लिए, और उसके बाद जो है फरमाइश सुनील गायकवाड़ भाऊ इनकी प्ले होने वाली है। इन्होंने लिखा है कि नमस्ते, हम पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ रोज कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, और हमारी फरमाइश है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आंखों में हमने आपके सपने सजाए। और लिखते हैं कि आज जो है खयाम साहब की पुण्यतिथि है तो ये सुनना चाहते हैं। फिरोज सिकंदपुरिया जी ने भी फरमाइश की थी एक गाने की खयाम साहब के, जो हम प्ले कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि हमें मैसेजेस जिनके आए हैं और शायद हम गाने ना प्ले कर पाए इनके।

लेकिन इन्होंने हमें मैसेज किया है, धन्यवाद उसके लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ रसिक म्हात्रे अलीबाग से हमें मैसेज करते हैं, और बलकरण वर्मा हमें मैसेज करते हैं, ये जो है अपने पूरे परिवार समेत हमें सुन रहे हैं, और ये ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज करते हैं। दिग्दर्शन और कविता इनका भी मैसेज आया है, और आगे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है शैलेश विक्रम चेतन, ये जो है ट्रैवलर्स है अंधेरी टू ठाणे, इन्होंने लिखा है बॉम्बे वाइकिंग का गाना सुनना चाहते हैं वो चली चली, तो कोशिश ज़रूर करूँगी लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि 3 से ज़्यादा गाने तो प्ले बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो अब प्रदीप अनंत कृष्णन जी का भी मैसेज आया है, और ये लिखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हैं, धन्यवाद। मुकेश कश्यप जी अपने परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं, और ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जिला मुरादाबाद से बने हुए हैं। शंकराचार्य जी तेलंगाना से सुन रहे हैं कार्यक्रम, और इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा नाम शामिल कीजिए, तो बिल्कुल। विक्रम आठवले जी हमें सुन रहे हैं, विद्या आठवले हैं इनके साथ, मीरज से ये हमें सुन रहे हैं। आकांक्षा मनोज सिन्हा हमें सुन रही है अहमदाबाद से, और गोप हमें सुन रहे हैं झारखंड से, पूरा परिवार हमारे साथ बना हुआ है, धन्यवाद। राजेंद्र परमार जी के भी मैसेजेस आए हैं, धन्यवाद आपका कि आपने मैसेज किया है, और इन्होंने टूथपेस्ट की जो बात थी वो पसंद की, और लिखते हैं कैची से काट के जितना मिल जाए उतना सब निकाल लो, ये बात है। और हितेंद्र दास जी हमें मैसेज करते हैं असम से, दत्तात्रेय आडट हमें मैसेज करते हैं वेरापुर से, और यहाँ पर सुमित प्रकाश मोदले भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेहर अरोड़ा जी श्री गंगानगर राजस्थान से, बाबा दादर से हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ पर मुझे मैसेज आया है इंग्लिश गाने की फरमाइश का, जो इंग्लिश गाना जो है आपको 10 मिनट बाद सुनने मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का। प्रमोद चिंचोलकर जी के बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन मैसेज इनका ऊपर चला गया था। ओमकार काटकर जी, रजनीकांत पाटिल जी फिर से मैसेज कर रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमारे और भी श्रोता हैं जिनके नाम हैं कई सारे, और जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया। और यहाँ पर एक आखिरी परमेश्वर पावड़ी नांदेड़ से हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया, यूं ही बने रहिए। और मैं आप सभी के लिए 2 गाने प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है तो शायद एक ही गाना जाएगा, तो मैं आंखों में हमने ये प्ले कर दूंगी क्योंकि खयाम साहब की पुण्यतिथि है और आप सभी का जो दिल है उनके गानों के लिए, उनके यादों में धड़कता है, तो इसलिए ये गाना उनके नाम 107.1 FM रेनबो की तरफ से। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं आपसे मिलूंगी अभी बस एक दिन बाद, आने वाले शुक्रवार को सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच। मैं हूँ वैशाली, और मुझे दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे

0: का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में JSSC CGL से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग दोहराई है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग

0: वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में

0: एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. U.S. Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
4: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
3: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations and strengthen the transport of key commodities including coal and iron. Mr. Vaishnav informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard.
3: ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए
4: द प्रोजेक्ट

0: परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन, कटक पारादीव की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी का साथ पा लेने का नाम नहीं, मोहब्बत तो उस एहसास का नाम है जिसमें किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी की याद बेवजह दिल को बेचैन कर दे और किसी के बिना भी उसकी मौजूदगी महसूस होती रहे। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस एक खूबसूरत एहसास बनकर दिल में रहते हैं और शायद इसी एहसास को सबसे बेहतर कोई गजल बयां कर पाती है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम रंगे महफिल में।

गजल की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है, इसमें लफ्ज कम होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। कभी एक शेर पूरी दास्तान कह जाता है तो कभी कोई धुन हमें बरसों पीछे ले जाती है। कोई पुरानी शाम याद आ जाती है, कोई अधूरी मुलाकात, कोई अपना चेहरा, या फिर वो शख्स जिसका नाम आज भी दिल की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़े पर लिखा है। संगीत शायद इसीलिए दिल को इतना अजीज है क्योंकि ये उन जज्बातों को आवाज़ देता है जिन्हें हम कभी कह नहीं पाते हैं।

कभी आपने गौर किया है, रात में सुनी हुई कोई गजल दिन की तुलना में ज्यादा असर क्यों करती है? शायद इसीलिए कि रात में दुनिया की आवाजें कम और दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई देती है। चांदनी, तन्हाई और धीमी आवाज में बजता कोई नगमा जिसे जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर जाती है, और फिर हम खुद से पूछते हैं, क्या कुछ यादें सचमुच कभी पुरानी होती हैं? शायद नहीं, कुछ यादें वक्त के साथ और भी हसीन हो जाती हैं।

0: इन प्यारी प्यारी गजलों के बीच प्रोग्राम रंगे महफिल आप सुन रहे हैं अपनी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी के साथ में। यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेते हैं, यानी कि एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ और भी गजल गीत लेकर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज शायद इंतजार है। किसी के आने का, उसकी आवाज सुनने का, उसके एक छोटे से पैगाम का। और जब वो इंतजार लंबा हो जाए तो दिल खुद ही एक महफिल सजा लेता है, जहां सामने कोई नहीं होता मगर यादें साथ बैठी होती हैं। एक ख्याल मुस्कुराता है, दूसरा आंखों को नम कर जाता है, और फिर कोई गजल धीरे से कहती है कि जो दिल में बस जाए उसे भुलाना इतना आसान कहाँ होता है। और गजलों के माध्यम से कहीं ना कहीं हम भी आपको ये बताना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात ही आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कोई सामने हो ना हो, कोई मौजूद हो ना हो, लेकिन ये आपकी

यादों में, आपके जहन में, आपके दिल में इस कदर उतर गया है कि आपको हर समय उनका साथ, उनका एहसास महसूस होता है।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल और ये महफिल सजी हुई है आपके साथ ठीक 12 बजे तक। मध्य रात्रि तक ये प्रोग्राम खास आपके लिए रहेगा। गजलों का ये सिलसिला, आप जगे हुए हैं, कहीं सोच में हैं, कहीं डूबे हुए हैं, तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो आपके दिल तक पहुँच रहा है। आज की इस महफिल में हम उन तमाम लोगों को भी याद कर रहे हैं जिनके लिए कोई ख़ास शख्स उनकी पूरी दुनिया है। हो सकता है कोई अपना आपसे दूर हो मगर उसकी याद आपके बिल्कुल पास हो। हो सकता है कोई बात अधूरी रह गई हो, कोई मुलाकात मुकम्मल ना हुई हो मगर एहसास आज भी वहीं ठहरा हुआ हो। तो आज की रात अपनी उन खामोश भावनाओं को थोड़ा वक्त दीजिए और इस संगीत को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए। बस यही चाहते हैं आपसे कि आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम रंगे महफिल में।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ नहीं छोड़ती। वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक चेहरा वैसा ही रहता है। शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है, वो सामने हो या दूर, उसका असर हमेशा हमारे साथ चलता है। और जब उसी एहसास कोई कई गजल छू ले तो लगता है जैसे किसी ने दिल की बात हमसे कह दी हो। तो हम भी आपसे दिल की बात कहने करने के लिए आए हैं, बस आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखिए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी सुकून, कितनी आरामदायक हो जाती है।

रंगे महफिल सिर्फ गजलों का कार्यक्रम नहीं बल्कि उन एहसासों की महफिल है जो हमारे दिल में खामोशी से पलते रहते हैं। जी हाँ, और ये पल जितने भी पल रहे

ये हैं इन पलों को अपने जीवन में संजोते रहिए, अपनी यादों में कैद करते रहिए, क्योंकि यही है जीवन में हमें खुशियां देने के लिए, हमारा जरिया बनने के लिए और हमारे जज्बातों को थोड़ा सा विराम देने के लिए इससे बढ़िया चीज़ें शायद ही कोई हो सकती है। और फिलहाल मैं आपसे लूंगी इजाज़त, आपके आर्ज दोस्त मुक्ति सैनी कहेगी आपसे इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक पहुंचते रहेंगे। और आपको ये सभी प्रोग्राम कैसे लगते हैं आप अपनी राय सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम बिंदास बोल में। आप दिल खोल कर रखिएगा प्रोग्रामों के बारे में, हमारे बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ नए सुझाव हैं, तो उन सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपके लिए इस समय मेरी प्लेलिस्ट में इंतज़ार कर रहा है, जो मैं आप तक पहुंचा के जाऊंगी। फिलहाल आप सभी को शुभ रात्रि।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो रहा है रात्रि के 12:10 और लीजिए भाई सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजुइरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल

टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आपको बताए देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 12:03:10 हो रहे हैं। और लीजिए श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप? तो लीजिए, बातें ना ज़्यादा करते हुए आपको सुनवाती हूँ ये खूबसूरत से गीत, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक आपके लिए।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान।

को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय आपको बताए देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 1:03 हुए हैं। और लीजिए, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सुहानी रात। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी, और लेकर ये नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 से हराया। माना सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:03 और लीजिए श्रोताओं, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ।

रात्रि के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में स्टिक विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्फ टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की जांच अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में स्टिक विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के

महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुदान ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रात के 4:03 और 5 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सारे कामा।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।